0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
3: आप सुन रहे CMRX 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 11 AM. Stay tuned.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9. Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

0: You're listening to CMR at 9 on CMR 101.3 FM.
1: Toronto!
0: Don't touch that dial. After a short break and a few messages from our sponsors, stay tuned for more hit Bollywood classics, timeless melodies, and non-stop entertainment. CMR 101.3 FM, Toronto! We'll be right back!
2: Looking for your next ride? Morningside Nissan, but ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAJ se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेम्पल्टन रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210. क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एटसेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील. कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सियर्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca.

0: 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है. सुखी कौर होम लाइफ सिग्नेचर रियल्टी से रियल्टर हमारे साथ हैं और बातचीत रियल एस्टेट की होगी और साथ ही साथ जो है कुछ अमेजिंग लिस्टिंग्स जो कि सुखी कौर जी के पास ऑलवेज होती हैं आपके लिए. एंड साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं या 10th टाइम होम बायर हैं, याद रखिए सुखी जी के साथ एज जब वो आपको रिप्रेजेंट करती हैं एज अ बायर और एज अ सेलर, she has an entire team of mortgage specialists, lawyers, appraisal, inspection, everything is taken care of. Aapko koi headache nahi hota when she is representing you. 647-408-7066. Sukhi ji, aapka swagat hai.
2: Thank you so much, Sunny ji. Sabse pehle to aapko
1: जी आपको भी हैप्पी वेंसडे. पहले तो वेरी क्विकली आपसे ले लेंगे रियल एस्टेट की अब half year is gone, the next half yearly, kis tarah se you are looking at these next few months for real estate in GTA and beyond GTA, aur phir aapki amazing listings.
2: जी सनी जी, आई एम प्रीटी श्योर के सबने ब्रेक के लिया होगा और सभी के जो वो न्यू सर्विस जो जून की सेल्स हैं अप. सो मार्केट 100% इज गोइंग टू You know, properties are selling as if it was predicted. So if you are in the situation, in the position that you were thinking ke aapne ghar lena hai, to please step up, come into the market taki aap achhe prices ka, achhe samay ka, and good weather mein you can buy a property and move rather than waiting and moving in winter. It is a hustle to honestly move in winter.
1: Absolutely, yeah, without a doubt. मैं आपका नंबर एक बार यहाँ पे फिर से दे दूँ, 647-408-7066.
2: जी. जी, सनी जी, listing absolutely amazing opportunity. चाहे आप first time buyer हैं, चाहे आप investor हैं. I have a power of sale पर घर है, in Kitchener, detached property है, 3 bedroom का ये घर है. फिनिश्ड बेसमेंट आपको मिलेगी विद किचन, विद एंट्रेंस एंड एवरीथिंग. पावर ऑफ सेल पर घर, ओपन आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा. बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है जी, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. ये प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है अंडर 700,000. डिटैच घर विद फिनिश्ड बेसमेंट 7 lakh की रेंज में लेना चाहते हैं, प्लीज गिव मी अ कॉल 6447-408-7066. बताते चलो, इस एरिया में आपको अगर प्रॉपर्टी रीसेल जो वैल्यू है राइट नाउ अराउंड 800 की रेंज में जा रही है, आपको सीधा सीधा 100,000 का फायदा हो रहा है. प्लीज डोंट मिस अपॉर्चुनिटी, इट इज गोइंग टू गो वेरी वेरी फास्ट. पावर ऑफ सेल प्रॉपर्टी 647-208-7066. अगर हमारे कर लेना चाहता है तो हमारे पास क्रेडिट वैली एरिया में जो कि न्यूअर एरिया है, डिटैच घर है, डबल कार गैराज का, 4 bedroom का ये घर है, 2 bedroom की फिनिश्ड बेसमेंट है सेपरेट एंट्रेंस के साथ. अंडर ये घर आपको 10 साल के अंडर एज में मिल जाएगा. सो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है. ड्राइवे जो है वो आपको स्टोन वाला मिलेगा. फुली अपग्रेडेड प्रॉपर्टी है इन क्रेडिट वैली एरिया. हाईवे से बहुत नजदीक है, जो हमारा वॉलमार्ट वाला प्लाजा है उसके बहुत ही करीब है. चलो फ्रेश को रेस्टोरेंट यू नेम इट, ऑल द अमेनिटीज आर देयर. करना क्या है, गिव मी अ कॉल 647-408-7066.
1: बिल्कुल जी, 647-408-7066 पर आप संपर्क कर सकते हैं सुखी जी से. एंड होम लाइफ सिग्नेचर रियल्टी के साथ काम करती हैं और बहुत लंबा एक्सपीरियंस है. और सबसे बड़ी बात ये होती है कि व्हेन यू डील विद अ रियल्टर, आपको कई बार ये भी नहीं पता होता है कि मॉर्गेज वाला कौन है. एंड यहाँ पर एवरीथिंग इज़ डन इन द रिवर्स वे, मीनिंग आप सुखी जी से संपर्क करते हैं, पहले सुखी जी आपकी प्री अप्रूवल करवा देंगी, मेक श्योर करेंगे कि आपकी मॉर्गेज का काम सारा खत्म हो गया है, एंड देन आप प्रॉपर्टी को चेकआउट करते हैं. सो एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ बाय सुखी कौर एंड द टीम.

0: Suki ji ka number 6474087066 647-408-7066. Suki ji, bahut bahut shukriya.
1: Thank you so much, Taniji. And just wanted to say, everything is done under one umbrella from start to end. Property ki aapko pre-approval se lekar aapki closing tak puri help ki jayegi. Do not worry about anything. Give me a call. I'll take all the worries and aapko aapke ghar ki chabiyan di jayegi.
0: Bilkul ji, aur number ek baar phir se, Sukhi Kaur ji ka number 6474087066. The weather is beautiful, jaise Sukhi ji ne kaha hai ki ye waqt hai ki jab aap apne parivar ke saath jaake properties ko check out kar sakte hain aur isse pehle ki phir se temperatures jo hai dip kare, phir se weather badle, schools open ho jaye, this is the time to go and sign the deal for the dream home that you were looking for. 6474087066. Bahut bahut shukriya Sukhi ji.
1: Thank you ji. Have a wonderful weekend.
0: You too. 647-408-7066 is the number. 6474087066. Auto home insurance mein Gurvinder ji Allstate ke saath kaam karti hain. Call her. Save money, खासकर जिन लोगों की renewals आ रही हैं, खासकर जिनके पास दो गाड़ियाँ और घर है, you can save at an average of $2,163 when you insure with Allstate. आज ही call करें 647-303-3207. अंडे का फंडा क्या होता है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन प्रतीक जोसेफ की आवाज में जोड़ी नंबर वन वॉज द फिल्म. गोविंदा संजय दत्त पर फिल्माया ये गीत. अंडे का फंडा जानने की हम सब कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे. बाहर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 36, और कहते हैं कि फ्लोरिडा और टेक्सस के इलाके में इतनी गर्मी पड़ती है कि आप किसी गाड़ी के ऊपर एक एग को रख दें तो फिर पता है, पता नहीं, एग ऑमलेट बन जाता है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टोरीज आई हैव हर्ड. आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज, बट इस तरह की कहानियां मैंने सुनी हैं कि अगर ओवर इजी खाने का मन है तो वो सनी सारा काम कर देता है, मतलब सूरज की तपिश में अंडा जो है कुक हो जाता है. चलिए इंजॉय अंडे का फंडा. आई विल बी राइट बैक.
2: अंडा अंडा अंडा अंडा हम सब ने देखा है, कई बार देखा है, पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है? ये कितना गहरा है? इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनहरा है. ये कुछ समझाता है, ये कुछ सिखलाता है. जरा गौर से सुनिएगा, हम गा के सुनाता है.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव, चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम, हर जर्नी को बनाए खास। Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ, ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज, ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स, फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, Wayne's Auto Group इज ऑलवेज देयर। आज ही विजिट करें waynesautogroup.com।
2: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिस्सागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296। इट्स 289-891-0296। आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम। Remember, you're in good hands with Allstate.
3: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Sirat 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
4: कोंडो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है? बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे वन से। कांटेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ। 416-666-2745।
5: This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling, investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें. Some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30 plus locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food, zabardast mithaiyon ka dusra naam Rajdhani Sweets and Restaurant.
6: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
7: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
6: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
8: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 905-457-3232. Clear Optical by Varun Kanda.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940. वेलकम बैक फ्रेंड्स. एक और कहानी मेरी जुबानी, एक चुटकी ईमानदारी. एक संत ने ग्रामीणों को खाने पर आमंत्रित किया. अचानक याद आया कि रसोई में नमक तो सुबह ही खत्म हो गया. संत शिष्य से बोला, जरा बाजार से एक पुड़िया नमक लेते आओ. ये ध्यान रखना कि नमक सही दाम पे खरीदना, ना अधिक पैसे देना और ना ही कम. शिष्य ने पूछा, अगर कुछ मोल भाव करके मैं कम पैसे में नमक लाता हूं और चार पैसे बचाता हूं तो इसमें हर्ज ही क्या है? संत बोले, ऐसा करना हमारे गांव को बर्बाद कर सकता है. सभी संत की बात सुन रहे थे. एक बोला, महाराज कम दाम पे नमक लाने से अपना गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा? संत ने कहा, सोचो कोई नमक कम दाम पे क्यों बेचेगा, तभी ना जब उसे पैसों की सख्त जरूरत है. और जो कोई भी उसकी स्थिति का फायदा उठाता है वह उस मजदूर का अपमान करता है जिसने कड़ी मेहनत से नमक बनाया होगा. शुरू में समाज के अंदर कोई बेईमानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसमें एक एक चुटकी बेईमानी डालते गए और सोचा कि इतने से क्या होगा. लेकिन खुद ही देख लो हम कहां पहुंच गए हैं. आज हम एक चुटकी ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं. Stay blessed, ladies and gentlemen. वेलकम बैक फ्रेंड्स. एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. और हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकुसी इन ब्रैम्पटन. 905-450-2828 इज द नंबर. टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान सुल्तान जी हमारे साथ हैं. स्टोर इज ओपन 7 डेज अ वीक, 11 AM टू 7 PM. सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर रुख करते हैं, एंड दैट इज द टीवी सेक्शन. वो इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट आई फील इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सुल्तान जी आपका स्वागत है.
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई. और इम्पोर्टेंट मैसेज आपने इसलिए कहा है या सेक्शन की बात की है क्योंकि टीवीज में बहुत सारे टीवीज ऐसे हैं जो कि इस वक्त डिमांड में है. खासतौर पे बिग स्क्रीन टीवी की अगर बात करें या लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी की बात करें, मिनी एलईडी के साथ अगर लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी आपको मिले और वो भी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे, तो फिर डेफिनेटली दिल करता है कि अपने टीवी को बिग स्क्रीन टीवी के साथ अपग्रेड किया जाए. और वो भी $2300 वाला 85 इंच मिनी एलईडी आपको मिले ओनली 1599 में. तो 1599 भी कस्टमर 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है. $700 की सेविंग भी हो गई और 6 मंथ इजी पेमेंट प्लान भी मिल गया. इसी तरह 75 इंच $1200-1300 वाला सिर्फ 899 में मिलेगा. इसमें $400-500 की सेविंग भी हो गई और 899 6 मंथ में पे करेंगे जी. 65 इंच 699 में मिलेगा और 55 इंच ओनली 399 में ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चिंकुसी वाली लोकेशन पे. फिर जब बिग स्क्रीन की बात करते हैं तो 98 इंच, ये भी सैमसंग का 98 इंच है जो कि $3500 वाला 1999 में मिलेगा. इसमें $1500 कस्टमर सेव भी करेंगे और 1999 6 मंथ में पे करेंगे जी. फ्री होम डिलीवरी है. इसके लिए आपको विजिट करना है BramptonAppliances.com या हमारी वेबसाइट पे या फिर 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकुसी ऑन बोवेड है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस. 905 450 2828 905 405-450-2828
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस पर टीवीज पर अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग डील्स चल रही हैं, फायदा उठाइए, पहुंच जाइए जल्द से जल्द। सुल्तान जी, साथ ही साथ टीवीज के साथ साथ हम अप्लायंस लॉन्ड्री सेक्शंस की भी बात करना चाहेंगे, जहां पर आपने अमेजिंग डील्स लगाई हैं। कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज के लिए कई बार पीपल आर लुकिंग आउट फॉर सम बेस्ट डील्स, और कई बार ऐसा होता है हम अपने घर के लिए सबसे बेस्ट टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री में चीजें चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि ओवरऑल आप इस पे रोशनी डालें।
1: बिल्कुल जी, अगर तो बंडल पैकेज लेने हैं, किसी के घर की क्लोजिंग आ रही है, तो उन्हें तो ऑलमोस्ट $2,000 की सेविंग किचन अप्लायंसेस में होगी, क्योंकि $5,000 वाला 36 इंच वाइड फ्रेंच डोर फ्रिज है, स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव है, टॉल टॉप की डिशवाशर है, 3 पीस का बंडल पैकेज स्टेनलेस स्टील $29.99 में मिलेगा, $2,000 कस्टमर सेव भी करेंगे और $29.99 6 मंथ में पे करेंगे जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बंडल पैकेज लेना है जी, जिसमें आपको बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटर डेप फ्रिज चाहिए, तो पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन $12,000 वाला $6,900 में लेके आप ऑलमोस्ट मोर देन $5,000 की सेविंग करेंगे बिल्ट इन किचन में। इसी तरह हमारे पास लॉन्ड्री में जी, जहां टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $1,600-1,700 वाला $10.99 में पेयर मिलेगा आपको, वॉशर ड्रायर दोनों $10.99 में, वहां फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, वॉशर भी स्टीम और ड्रायर भी स्टीम फीचर के साथ, प्लैटिनम सीरीज प्लैटिनम कलर में $2,500 वाला $17.99 में लेके आप $800 फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर पे सेव करेंगे, और $17.99 भी 6 मंथ में पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। इसके लिए विजिट करें जी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है, ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट कॉम हमारी वेबसाइट है जी, 905-450-2828 हमारा नंबर है। सिंगल पीस फ्रिज लेना है 30 इंच अपराइट फ्रीजर के साथ फ्रिज $1,400 वाला $799 में मिल जाएगा, सिंगल पीस वॉशर चाहिए आपको $1,000 वाली $599 में मिल जाएगी, सिंगल पीस ड्रायर चाहिए आपको $900 वाला $499 में मिल जाएगा, फ्री होम डिलीवरी 6 मंथ नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान है जी। पहुंचना है आपको 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड, ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट कॉम हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, वहां आपको वेयर हाउस क्लियरेंस सेल का आइकॉन मिलेगा, जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक आइटम 40% और कुछ एक 50% डिस्काउंट पे मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल डिशवाशर चाहिए स्टेनलेस स्टील का $1,000 वाला डिशवाशर, वहां आपको 50% डिस्काउंट पे $499 में मिलेगा। ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट कॉम 905-450-2828 905-450-2828 जी।
0: बिल्कुल जी, 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। सुल्तान जी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
0: जी। 905-450-2828 तुरंत।

0: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 6478631940, 6478631940।
1: अक्सर घर खरीदे में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है, ऐसा क्यों?
2: नया इलाका और नया घर,
1: अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं।
2: घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
3: अनदर डॉन क्लीन विद द डॉन डक्स।
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: Real estate is not easy business. Aur jo easy nahi, usse easy banate hain Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley. Ghar khareedna ya phir ghar bechna, first time home buyers ya phir investors, sabki pasand ka rakhte hain khayal. Ye hai Raj Joshi, Realtor bemisal. Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty, 647-866-1086. 647-866-1086. Raj Joshi, sirf naam hi kaafi hai. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाजत. अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM. शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है, 6478631940. टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन.
2: अरे वाह.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: Kya aap sun rahe hain?
3: Kya aap sun rahe hain?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
5: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं हूँ शिवानी आपके साथ, और मैं मेरे साथ हैं आमिर, और हम दोनों के साथ हैं आप सारे लिसनर्स जो जुड़ चुके हैं रेडियो टोरंटो कनाडा के इस आफ्टरनून ड्राइव टाइम शो में। खूबसूरत सी दोपहर है, एक और गर्म सा दिन है, फुल ऑन समर की दोपहर, समर की शामें, लंबी लंबी सी शामें जिनका लुत्फ आप उठा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारा मौका मिलता है हमें जब हमें लगता है कि हम अपने काम से, अपने जो भी हमारे रिस्पेक्टिव जो जॉब्स हैं या काम है या बिजनेसेस हैं उनसे हम जब घर वापस जाते हैं तो लगता है इवनिंग इज स्टिल टू गो। शाम के प्लान्स, जॉगिंग करना, वॉक करना, ट्रेल पे जाना, बच्चों के साथ बाहर इंजॉय करना, और ज़िंदगी में बच्चे बनते रहना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको समर हमारे पूरा पूरा मौका देता है, राइट। और गुलजार साहब कहते हैं ना कि अपने अंदर के बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। बहुत सारी समझदारी भी ना ज़िंदगी को बेरंग और बेनूर बना देती है। तो ऐसी ही बातें चलती रहेंगी, सुपर डुपर हिट गाने चलते रहेंगे, हमारे स्पॉन्सर्स के मैसेजेस आपको मिलते रहेंगे, और ये सब चलेगा आमिर और शिवानी के साथ 416-303-3639।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
1: ख्वाब पूरा हो सकता है, आपका बच्चा भी अब डॉक्टर बन सकता है।
0: अपने बेटे या बेटी को मोस्ट अफोर्डेबल रिकॉग्नाइज्ड ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी डोमिनिका में इनरोल करवाएं,
1: उसे डॉक्टर बनाएं। 20 इयर्स ऑफ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, नो एमकैट रिक्वायर्ड,
0: 90% पास रेट।
1: कॉल नाउ 416-743-9222।
0: 416-743-9222।
1: और विजिट allsaintsuniversity.org। ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बनने के बाद आपका बच्चा अमेरिका, कनाडा, यूरोप और किसी भी मुल्क में एज अ डॉक्टर काम कर सकेगा।
3: कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नज़र पूछ रही हो जैसे। राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, वो नज़र चुपके मुझे देख रही हो जैसे। एक लम्हे में सिमटाया है सदियों का सफ़र, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। इस तरह पैरों तुझे सोचते रहते हैं हम, अपनी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: और साहब, बात करते हैं प्रोग्राम के शुरू में ही आपको मिलने वाली ग्रांट के बारे में। दिन बहुत कम रह गए हैं। यू गॉट टू बी क्विक, यू हैव टू मेक योर डिसीजन। दिस इज ओरिजिनल, दिस इज जेन्युइन, दिस इज हैपनिंग, पीपल आर गेटिंग फंडिंग, लोगों को पैसा मिल रहा है वेरी थिक एंड फास्ट एवरी सिंगल डे। कभी 15 लोग, 18 लोग, 20 लोग ग्रांट ले रहे हैं। और आपको बता दें कि 70-80 हजार डॉलर मिलेंगे, जिसमें से आधी ग्रांट होगी जो आपको लौटानी नहीं है, वापिस नहीं करनी है, और आधा लोन होगा जो इंटरेस्ट फ्री होगा। दिलाएगा कौन? नागपाल जी, वेलकम करते हैं आपको।
5: थैंक यू वेरी मच, सभी को सलाम हमारी तरफ से।
4: बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वक्त बहुत कम रह गया है, तो डिसीजन के हवाले से बताइए कि हाउ क्विकली शुड पीपल मेक अ डिसीजन टू एनरोल।
5: सिर्फ 15 दिन रह गए हैं जी, 15 days, that's it।
4: अच्छा,
5: आज आपको गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम करके तालीम हासिल करते हैं आप, हुकूमत से फंडिंग लेते हैं आप, हुकूमती फीस पे करती है कॉलेज की, आपकी जेब से कुछ नहीं गया। ऑन अदर हैंड आपके अकाउंट में फंडिंग आती है 30 से 100,000 डॉलर की फंडिंग होती है, जिसका हाफ पोर्शन तो ग्रांट है। ग्रांट आज की डेट में 15 दिन बाद एनरोल करेंगे तो लोन ही सुनेंगे आप हमारे से।
4: बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। यहाँ नंबर है नागपाल जी का नंबर, ये नंबर मिलाएंगे आपको ग्रांट मिल जाएगी। 4372643175। किसके लिए है ये ग्रांट? कौन अप्लाई कर सकता है? कौन एलिजिबल है?
5: आपको जो सुन रहे होते ज्यादातर वो PR, सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन तो होते ही हैं। और वो स्कारबरो में ही होते हैं, ओंटारियो में पार्टी होते हैं, ओंटारियो में होते हैं।
4: अच्छा, बिल्कुल सही।
5: और मेन इम्पोर्टेंट थिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट, फैमिली इनकम जिनकी कम है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे less than $70,000 है, किसकी होती है? ऊबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, स्मॉल बिजनेस ओनर, सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे और हाउस वाइफ, अनएम्प्लॉयड, इन लोगों को बेनिफिट है। कोई एज लिमिट नहीं है, आपसे 75 के पेंशन पे आप एलिजिबल हैं, आपसे 30 ईयर्स के आप एलिजिबल हैं। आप तालीम हासिल करते हैं मैनेजमेंट के, आसान से फुली ऑनलाइन कोर्स घर के कम्फर्ट से करते हैं, और आप हुकूमती फीस पे करती कॉलेज की, हुकूमती आपको आपके अकाउंट में मुकम्मल फंडिंग देती है 30 से 100,000 डॉलर की, जिसका हाफ पोर्शन ग्रांट है। डिपेंडिंग ऑन फैमिली साइज फंडिंग वेरी करती है, अगर आपके बच्चे ज्यादा हैं आपकी ज्यादा फंडिंग बन जाती है, फैमिली ऑफ फाइव की अप टू 100,000 की फंडिंग भी बन जाती है, सीधा उनके खाते में आती है। उसमें से 50,000 तो आज की डेट में ग्रांट है सर, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही है नेक्स्ट अकेडमिक सेशन से, 1 अगस्त के बाद पॉलिसी चेंज है गवर्नमेंट की, ग्रांट नहीं लोन आएंगे। लोन तो हमारे ऊपर पहले से इतने और के लेंगे आप, हम कोई और फंडिंग में डील ही नहीं करते, इसमें एक कुंडी होती है, कैच होता है, सारा ओरिजिनल काम है, एंड टू एंड कोई इसमें हिडन चीज है ही नहीं।
4: बिल्कुल सही, यहाँ नंबर है 4372643175। मान लीजिए किसी के पास PR है या प्रोटेक्टेड पर्सन है, वो या पासपोर्ट है उसके पास कैनेडियन, और घर में बैठा हुआ है, खवातीन है, घर का काम काज कर रही हैं और कुछ नहीं उनके पास रोजगार वगैरह, बाहर लोग टैक्सी वगैरह या छोटा मोटा उबर चला लेते हैं, क्या उनके लिए भी रीजनेबल है ये?
5: बिल्कुल।